0: तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: या अय्युहा नबी उत्तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा।
0: ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है।
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا।
0: और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमलों से खबरदार है।
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا।
0: और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है।
1: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: This is FM
1: 101.1. किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
2: 101 FM।
3: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: This is FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.1.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Monday, 22nd Zilhaj, 8th June 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Sadia Sattar. First, the headlines. Pakistan People's Party parliamentarians have emerged as single largest party in Gilgit Baltistan Assembly elections with 10 seats. Security forces have killed 27 terrorists belonging to Indian-sponsored Fitna al-Khawarij in a series of intelligence-based operations in North Waziristan district. Minister for National Food Security says government is making all-out efforts to provide relief to people in upcoming federal budget. Albania has evinced keen interest to expand bilateral trade and investment ties with Pakistan. U.S. President says new strikes by Israel and Iran would not affect peace talks with Tehran. Abbottabad region have won the National T20 Cup, beating Karachi region Whites in final by 9 wickets at Lahore.
1: This is FM.
2: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। यह पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
3: 101 FM।
4: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतलिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: I love FM 101.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: We'll be right back.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshao Shao।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has felicitated the people of Gilgit-Baltistan on the conduct of transparent, peaceful and politically vibrant elections. The Health Minister says the government is taking solid measures to upgrade nursing sector on modern lines. In Afghanistan, farmers are facing severe financial crisis due to the closure of trade routes with Pakistan. The World Oceans Day is being observed today. And now the news in detail. The Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif has felicitated the people of Gilgit-Baltistan on the conduct of transparent, peaceful and politically vibrant elections in the region. In a statement, he said Pakistan People's Party has emerged as the majority political party in Gilgit-Baltistan elections. He extended congratulations to the Pakistan People's Party leadership. The Prime Minister also congratulated the successful candidates of the Pakistan Muslim League Nawaz, saying they put up a strong contest and performed well.
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है. इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है. बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें. और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें. आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं. तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं. मफादे आमा का ये पैगाम विजारते इंसानी हुकूक हुकूमते पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए विजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें. ये पैगाम विजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया.
6: This is FM 101.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: This is FM 101.
9: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
3: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
3: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो।

मिथक सा गया और चुप हो गया, मिथक सा गया और चुप हो गया, मिथक सा गया और चुप हो गया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो

धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना,
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: रात के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान कौमी सलामती और आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज पर तबादले ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की के लिए मावन पायदार ऑटोमोटिव निज़ाम के क्याम की जरूरत पर जोर दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन ने कहा है कि आइंदा माह से इस प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम बराह रास्त डिजिटल वॉलेट्स के जरिए होगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में 14 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Sur aur sangeet, saazo aawaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: नजर आ रहे होंगे लोगों को माशाल्लाह, इनके डोले अभी भी मेरे ख्याल को 22 इंच का डोला होगा इनका, तो 20 तो फॉर श्योर है ही है। तो ये तो एक रूटीन लाइफ होती है आपकी, अभी जो चीज़ करते हो, तो अपने आप को जो जो मेरी स्ट्रगल है, मेरे जहन में एक चीज़ यही कि मैंने अपने छोटे जो कज़न्स जो दोस्त यार जो देखे जो एज में मैं 45, तो मैंने जब अपने से यंग लड़कों को लोगों को देखा, तो मैंने सोचा यार कि इसको लोगों में एक एक मैसेज दिया जाए कि यार मैं जिससे भी पूछूँ ना यार क्यों ऐसा हो गया, यार शादी हो गई, अच्छा जी शादी हो गई, फिर किसी यार जॉब लग गई, जिससे पूछो उसके पास एक एक्सक्यूज होता है यार ये हो गया। तो मैंने ये चीज़ जहन में ये सोच लिया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उस टाइम पे 6 साल पहले मेरा पूरी दुनिया में बिजनेस था, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, तो मैंने कहा इन्हें मैं करके दिखाता हूँ, बोलने से नहीं होगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि यार पहले आप खुद करो फिर अगला यकीन करता है। अब मैं आपको बैठ के ज्ञान देता रहूँ ये करो ये खाओ वो खाओ ये करो और खुद सोया रहूँ, तो आप देखो आप बाल लगवाने जाओ, अगर बाल लगवाने जाओ अगर आगे जो डॉक्टर है वो गंजा, तो आप बाल नहीं लगवाओगे, तो खुद गंजा आपके बाल क्या लगाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी उस एज में उस टाइम आई वाज लाइक 39 समथिंग, मैंने फिर बॉडी बनाई, बहुत शदीद मेहनत और बड़ी डाइट कंट्रोल, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और फाइबर्स और लाइक हर चीज़ को स्केल पे रख रख के स्केलिंग कर कर के खाना, फिर 8 घंटे की नींद पूरी करना, फिर ट्रेनिंग मैंने कार्डियो अलग करना और मसल ट्रेनिंग अलग करनी। तो मैंने ये सब कुछ बिजनेस के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मैं कभी भी कहीं भी एब्सेंट नहीं हुआ, किसी जगह भी कहीं इनवाइटेड था तो गया हूँ वहाँ पे, बच्चों के साथ छुट्टियों पे भी जाना और सुबह 10 से लेकर रात 10 तक बिजनेस पे भी होना, बीच में एक टाइम पीरियड निकालना कि जाके एक्सरसाइज की वापस आ गए। तो ये एक एक्सक्यूज़ होता है अपनी सेहत को अच्छा रखें। जब वो चीज़ की तो उसके बाद मैं सोचा इसको दुनिया में कैसे लेके आए, अब वो अपने अंदर एक संजू बाबा तो है हमेशा से, तो मैं कह अब तो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, अब तो मोबाइल में हर चीज़ है। तो फिर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पकड़े, वहाँ से अपने आप को थोड़ा ज़रा लोगों को देखा कि यार इफ आई कैन डू तो यू कैन ऑल्सो डू दैट।
1: अच्छा ये मैसेज था मेन कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी
0: कर सकते हैं बिल्कुल। और अभी भी मैं जितने सुनने वाले हैं देखने वाले हैं, प्लीज़ अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दें किसी भी किस्म के, और जिम जाएँ, अपनी ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग के हवाले से भी अगर आप पूछेंगे तो मैं कुछ टिप दूंगा। वैसे
1: अच्छा, मैं सबको बताना चाहूंगा कि दोदी खान मेरे भी उस्ताद मैं इनसे ऑन एंड ऑफ टिप्स लेता रहता हूं, तो आजकल मैं इंजरी से गुजर रहा हूं लेकिन मैं इनसे बहुत टिप्स लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका एक्सपीरियंस होता है उसे पूछने में कोई शर्माना नहीं चाहिए।
0: नहीं सर, आप खुद बहुत अच्छे माशाल्लाह, आपकी फिजिक आपकी खुद बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन आई डू एग्री कि जिसके पास नॉलेज है तो उसे पूछना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं अक्सर अभी भी मैं अपना आपके शो पे आने से पहले मैं लेट थोड़ा इसलिए हो गया था, मैं बेटे से बात करता तो मैं उससे कुछ चीज़ें सीख रहा था।
1: अच्छा,
0: तो इज जस्ट 20, तो बात ये कि आप किसी से कभी भी सीख सकते हो। आपने जिस दिन अगर अपने वो विंडो बंद कर दी ना कि यार मैं तो ज्ञानी सबसे बड़ा हूँ, तो उस दिन आप फ्लॉप हो जाओगे। आप हर एज में लाइक लास्ट डे ऑफ योर लाइक एज भी आप सीखते हो, तो सीख नहीं बंद करनी किसी भी चीज़ की, सीख आपने रखनी है हमेशा।
1: एग्जैक्टली। अच्छा दो दिन मुझे बताओ कि अब क्योंकि आपके पूरी दुनिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अब जहाँ पे फॉलोअर्स हैं वहाँ पर एक कमेंट तो आपको बहुत सुनने को मिलता है, यार आपके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं, आप देखो जहाँ पर लोग पसंद कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं क्रिटिसाइज, अब जैसे हमने पहले कहा कि क्रिटिसाइज।
0: अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम होता हूँ, मैं अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो मेरे फैंस हैं उन्हें जो जो मेरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का या टिकटॉक का, मैं वहाँ से उन्हें रिप्लाई ज़रूर करूँ, मेरी कोशिश होती है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि
1: मुश्किल
0: हो
1: वो। अच्छा, लोग इस चीज़ को नहीं समझते, समटाइम वो समझते शायद जान के,
0: हाँ जान,
1: लेकिन बहुत मुश्किल हो
0: जाता है। ऐसा है नहीं, एक तो आपको पता है हमारे यहाँ समटाइम्स इंटरनेट का इशू होता है, जिस टाइम टाइम होता है उस टाइम इंटरनेट नहीं होता, तो वो बंदा कहता है यार अब टाइम है तो कुछ करने को नहीं है, क्या करें। और जिस टाइम नेट बेहतरीन चल रहा होता है उस टाइम टाइम नहीं होता, तो फिर भी मीन वाइल मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं जो कमेंट्स करते हैं।
1: आपकी बात काट रहा हूँ, कल मैं यासिर हुसैन का पोस्ट पढ़ा था, वो उन्होंने लगाया था, वो मेरे ख्याल से कि नॉर्दर्न एरियाज की पिक्चर थी, तो उस पे लिखा
0: पानी वाली दरिया वाली
1: मेरे ख्याल से कोई था।
0: अच्छा, मैं यासर भी को फॉलो करता हूं, ही इज माय फेवरेट ब्रदर।
1: अच्छा, उधर उन्होंने लिखा हुआ था इकरा ने कि शुक्र है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। تو یاسر حسین نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ انٹرنیٹ ہوتا تو تم نے کون سمجھے۔

0: उनका कहना कहने का मकसद ये था कि घर में भी यूज नहीं करने देती।
1: अरे अरे, खैर उन्होंने प्यार से क्या होगा।
0: हाँ, obviously, obviously.
1: अच्छा,
0: तो वो sometimes होता है जो husband and wife actor actresses होते हैं, वो online इस तरह के jokes में वो करते रहते हैं।
1: ऐसे ही, ऐसे ही।
0: तो आपकी बात से मुझे उनकी बात आ गई कि अगर इंटरनेट होता अभी तो आपने कौन सा मुझे यूज करने देना था।
1: तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हेटर्स हैं वो sometimes लिखते हैं, या हेटर्स तो मैं नहीं उन्हें कहूंगा कि यार इसके उस पहनने को शर्ट नहीं है।
0: नहीं, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप उसको किस तरह टैकल करते हो?
1: यार मैं उस दिन नादिया खान के शो पे था और आपको मेरी नेचर पता है, मैं अब दूसरे शो में ये बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह वो दिन ना लाए, मैं सम टाइम सोचता हूँ कि मैं कोई रेफरेंस यूज करूँ और इस आई डी का एड्रेस निकलवाऊँ और इसको फिर जाके मैं मिलूँ
0: उनको समझाऊं कि
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना।
1: नहीं नहीं, समझाने वाली तो बात ही नहीं।
0: मैं समझ गया, मैं ब्रीफली बता रहा हूं।
1: हां, मैं उसको फिर ऐसा समझाऊं कि वो वीडियो भी बनाऊं और सोशल मीडिया पे डालूं भी, और जितने भी हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनको बोलूं यही काम करो, क्योंकि उसकी वजह है कि यार मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ होती है कि यार आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसको बुरा भी ना कहें, आपको कोई हक नहीं।
0: बुराई करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना
1: बहुत आसान है यार। तारीफ के दो लफ्ज बोल दें यार, क्या बुरा है,
0: अगला बंदा खुश हो जाता
1: है। हाँ, खुश हो जाता।
0: अगर आप चाहते हैं आपसे कोई लोग जो है मुस्कुराएं, खुश हो,
1: सदका जारी है यार, कह दें क्या बुरी बात है। लोगों को इशू रहता है इसके टैटूज हैं, इसके टैटूज हराम। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, तू भाईजान मेरी कब्र में आपने जाना है? नहीं जाना ना। अगर मैंने एक चीज की है, डेफिनेटली यार एक टाइम जोन होगा, शायद मेरी नॉलेज उस टाइम नहीं होगी इतनी, ठीक है, पता नहीं किस मैं एक जोन में होऊंगा, जिस चीज़ में होऊंगा तो मैंने मेरे कितने इमोशंस उसमें होंगे, तो मैंने उस चीज़ को किया। डेफिनेटली इंसान को रिग्रेट्स भी होते हैं लाइफ में, तो मैं इसको रिग्रेट तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे जो टैटूज हैं वो मेरे बच्चों के नाम है, मेरी बेटी एंड दैट्स इट, तो मुझे इस पर कोई रिग्रेट ऐसा है नहीं। बट फिर भी समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि यार अगर इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे गलत जाता है, अगर मुझे कोई देख के टैटू करवाता है तो मुझे उसके लिए मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ फिर, और वो मुझे रिग्रेट होता है, क्योंकि अपने लिए तो खैर मैंने अपने साथ किया तो मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करता कि यार मैंने किया है। सम हाउ सम वेयर मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँगा बेहतर करने की भी, लेकिन अगर मुझे कोई देख के करे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, और जो सुन रहे हैं देख रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ मना की गई है, और इसके ऊपर प्रॉपर अपनी नॉलेज गेन करें और इसको जहन से निकाल दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
0: लेकिन इस चीज़ से किसी को जज ना करें।
1: देखिए, ये तो हमारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर आप मॉडर्न इस्लामिक कंट्रीज में जाएं, आप तुर्की चले जाएं, तो आप वहाँ देखेंगे तो अगर कोई इमाम जमात करा रहा है उसमें भी टैटू होगा, तो वो तो माइंड नहीं करते। मैं सऊदी उमरे पर गया हुआ था, मैंने पहना हुआ था आराम, तो वहाँ की एक जो एक अलग से पुलिस है जो नमाज कायम करवाते हैं, तो अब ये मेरे साथ खाना काबा में हुआ ना, तो मैं बड़ा मुझे हुआ कि काश कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क अपने आप को कहता, तो इस्लामी मुल्क सर्टन चीज़ों में ही है या सब में है? अब वो साहब ने मुझे रोका, तो उसने मुझे कहा ब्रदर वेरी फॉर्म, मैं कहा फ्रॉम एम्स्टरडम, कहता है ओके फाइन, कहता है ब्रदर ये कि तुम्हारे भी टैटू है ना, तो मैं कहा तुझे कोई मसला है इससे? यार हसनैन भाई आप यकीन करें, उसने एकदम से मुझे लाइक दोनों हाथ किए, दोनों आई हैव नो इशू विद इट। उसने खाना काबा की तरफ इशारा किया, कहता तू अल्लाह के घर है, उसने तुझे बुलाया, मैं कौन हूँ तुझे मना करने वाला, जो उसने बुलाया है तुझे उसको तेरे टैटू से मसला नहीं, तो मैं तुझे क्यों मना करूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तस्वीर बनी हुई है, तो उसको अगर तू आराम ठीक से पहन ले तो कवर हो जाएगा। तो मैं इतना उस चीज़ को मैंने सोचा, मैंने कहा काश इसकी कोई वीडियो बनी होती और उसको मैंने लगाया होता सोशल मीडिया पर, खास करके उन लोगों के लिए जो इतना इसको बुरे वे में पोर्ट्रे करते हैं। यार अल्लाह के काम है, उसको देखने दो, उसको करने दो, खुद ना ऐसे काम करो कि यार आप खुदा ना खास्ता के उस दायरे से बाहर हो जाओ।
0: बिल्कुल
1: नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा, तो चलो थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे आते हैं, मुझे बताओ कि एक्टिंग की फील्ड में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ा ब्रीफली, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो नए लोग आते हैं, ऑब्वियसली हर एक जर्नी होती है, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। आप जिस मुकाम पे पहुंचते हो उसके लिए आपके बहुत स्ट्रगल होती है।
1: बहुत स्ट्रगल होती है, हसनैन, इजी चीज नहीं है। मैं कौन सा बताऊँ, एक्टिंग इज रियली डिफिकल्ट थिंग। उसके लिए एक तो टाइम आपको छोड़ना पड़ता है, फैमिली सेक्रीफाई करनी पड़ती है, फ्रेंड्स करने पड़ते हैं, फिर आपको लाइक आपकी लाइफ की तकरीबन हर चीज़ छोड़नी पड़ती है अगर आप के पास कोई सिफारिश नहीं है तो। अगर आप मेरी तरह आ रहे हैं तो 2001 के बाद आज 2026 में 25 साल बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, जो कि लोगों को पता ही नहीं है।
0: नहीं पता, इसलिए मैंने शुरू की बात की थी।
1: तो अब जिन्हें पता लग गया तो यार आप लोग ये जान लो कि जो देखते हैं लोग अक्सर मुझे बहुत यंग लड़कियाँ लड़के बहुत कहते हैं जी हमने एक्टर बनना है हमने, तो आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर वेरी बेस्ट क्योंकि उनके पास ये मोबाइल
0: है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
1: हैं, आप अपने आप को इस तरह लेके जा सकते हो। तो बैक इन 90s और ये जो मुझसे जो पहले थे उस टाइम तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि क्या चीज़ किस तरह होगी, और हम तो खैर उस टाइम के लगे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता कर, हाँ सिफारिश कभी कोई यूज़ हुई नहीं क्योंकि मैंने आपको आगे बात बता रहा था कि जब मैंने नबील भाई फिजा बैंक से बैठे सारी बात सुनी तो मुझे उन्होंने कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट, मैंने कहा जी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे किसी ने लाइक सिफारिश पे यहाँ पर मैं आके बैठा हूँ किसी ने आपको रेकमेंड किए। तो नबील भी हंस पड़े, कहते हैं यार अगर तू मुझे जानता है तो तुझे पता है कि सिफारिशी बंदा मैं कोई नहीं लेता। तो मेरे लिए बड़ा वो एक ऑनर का मोमेंट था कि यार इन्होंने मुझे किसी प्रोजेक्ट में देखा होगा डेफिनेटली, अब वो कौन सा उन्होंने मुझे बताया नहीं, मेरा काम देखा होगा। फिर एक जगह हम लोग एक मॉल में थे, वहाँ पर उनसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा यार हमें जो कैरेक्टर चाहिए था वो हमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए था कि जो बॉडी बिल्डर हो और हमारे इस किरदार को अच्छे से निभा सके। तो ऑब्वियसली आप जब किसी को एनालाइज करते हो फिर सोचते हो, और फिज़ा ने बल्कि भी नबील भाई की मेरे पास एक वीडियो पड़ी हो मैं कल पोस्ट करूँगा, उसमें भी उन्होंने भी कहा कि यार मेन सुपर स्टार, तो उसकी वजह कि अलहमदिल्ला जो मुझसे वो मेरा जब पहले दिन का मेरा सीन था ना तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। I'm sure you, आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप
0: हम भी सिनेमा में यही कहते हैं यार हमारा दोस्त आया।
1: अरे थैंक यू। तो मुझे जब मैंने पहला सीन दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह नबील भाई वो सब हंसना शुरू हो गए, बड़े रिलैक्स हो गए, पीछे हो गए, तो मुझे लगा पता नहीं शायद कोई गलत किया होगा। तो नबील भी कहते हैं यार कि एक्चुअली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग तू इतना अच्छा करेगा।
2: अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ।
1: तो वो एक जो जुमला था उसके बाद पूरी फिल्म ऐसे अल्लाह पाक ने करवाई अल्हम्दुलिल्लाह के वो आपने देख ली, बहुत मजे की, बहुत मजे ले लेके।
0: अच्छा आप लोगों ने मानी को आखिर में भागने नहीं दिया। अच्छा मैं यही बात सोच रहा था कि मानी जो है वो शुरू से मूवी एंड तक जो है साथ दे, आखिर में उसको छोड़ दिया।
1: यार मानी भाई जो है ना, मानी भाई बड़े मजे के एक अदाकार हैं हमारे, बहुत टैलेंटेड हैं वो। बहुत सारी चीजें मानी भाई के बीच में अपनी खुद की बनाई हुई थी, और नबील भाई से उनका प्यार भी है, फिजा से भी है, तो वो उनको क्योंकि मानी भाई खुद भी बड़े डायरेक्टर भी
0: हैं। जो आखिर में कहा था लग रहे हेलीकॉप्टर गिर
1: जाए यार, ऐसे ऐसे डायलॉग मानी भी खुद बनाता है। अब ये नबील भाई के इसमें कोई हाथ नहीं है, तो वो जो मैं तो नहीं चल सकता, मैं नहीं जाऊंगा, तू भी नहीं जाएगा, तो ये बातें मानी भाई की अपनी, जो एक जिसमें ना कि टू टू टू टू मोटू मोटू मोटू, तो वो इस तरह के उनका बीच में लाइक कोई सीन था नहीं, मेरा फास्ट से एक डायलॉग था, तो मानी भी खुद से जंप इन कर जाते हैं हर चीज में कि बहुत मजे के यार वो खुद बड़ा क्रिएटिव।
0: जब से उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में होस्टिंग जब से स्टार्ट की थी उस टाइम से वो
1: कब से, हां वेरी वेरी माशाल्लाह टैलेंट बंदा, उनसे बड़ा मजा आता है काम करना।
0: हां बड़ा मजा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक वैसे मैं वाजिद साथ बैठे हैं, हम अक्सर बात करते हैं जब आपकी वीडियो देखते हैं, एक आपका टिकटॉक की वीडियो में स्टाइल है ये वाला,
1: हां
0: ये बड़े मजे का, ये आपने अपना सिग्नेचर साइन रखा हुआ।
1: अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, ये मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, लेकिन इसी तरह टिकटॉक पे सुनते सुनते सुनते ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आता था बड़ा नेचुरल सा, और वो जब से मैंने टिकटॉक पे कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, फिर कुछ ऐसे टिकटॉकर्स थे जिन्होंने वो कॉपी करना शुरू किया,
0: अच्छी बात है,
1: और हाँ लेकिन वो हुआ ये कि वो एक नेचुरल सा था, क्योंकि अगर किसी ने खुद बनाई कोई चीज़ हो ना तो वो चलती है, आपके एक नेचुरल एक आपके आप परफॉर्म कर रहे हो, आप बड़ी फीलिंग्स के साथ करते हो, लिरिक्स को पकड़ते हो, मूड को पकड़ते हो, फिर आपको आपको होता है कि यार जो देखने वाले हैं वो फील। अब बहुत सारे आप यकीन करें, मैं तो रफ़ी जी लता जी के उनके गानों पे अक्सर बना के डालता हूँ, तो बहुत सारे जो मेरे फॉरेन में फॉलोअर्स हैं कनाडा में अमेरिका में कहीं भी, और आप यकीन करें उनके मुझे जब मैसेज आने ना, कभी मैंने जब लाइव आना तो वो हमेशा कहते हैं यार हमारे पेरेंट्स ये सुना करते थे, तो दे आर नो मोर, तो इस गाने से हमें उनकी लाइक याद ताज़ा होगी, और लाइक वो फैंस हैं फिर कि वो कभी कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसे रिलेट हो जाते हैं आपके साथ इमोशनली, कि मेरे एक और बड़े प्यारे हमारे टोनी भाई हैं, तो शहबाज नाम है, शहबाज नाम है ना टोनी भाई, टोनी भाई, हाँ मैं टोनी भी उन्हें कहता हूँ, तो टोनी भी सुन रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो मुझे अक्सर कॉल करते हैं, और वो बल्कि एक दिन मैंने एक टिकटॉक बनाई तो उसको इवन उन्हें जो है तो इतना उन्होंने इतना उसके अंदर वो चले गए कि वो रोना शुरू हो गया। मुझे कॉल किया, मुझे मेरी माँ की याद आ गई सुन के। तो भाई है मेरे, बड़े बड़ा प्यार है मेरा उनसे। तो वो अक्सर जब भी मेरी कोई, वो इतनी देर को मुझे फ़ोन करेंगे, मोदी भाई लव यू यार, ये टिकटॉक देखी मुझे मज़ा आ गया। तो इस तरह के जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं बड़े ऑर्गेनिक हैं, मैंने कोई ख़रीदा नहीं कहीं से कभी कुछ। तो वो इसीलिए हैं कि यार मेरे गाने पुराने हैं, और जो नई जनरेशन जो आजकल जेंजीज हैं वो भी सुनते हैं, तो कहते हैं यार वो ओल्ड इस गोल्ड, वो वाला जो सीन है ना एवरग्रीन वाला, वो लिरिक्स, वो चीज़ें, वो बातें बड़ा मज़ा करती हैं। तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है उस पर परफॉर्म करना, लेकिन वो जो ये एक सिग्नेचर वाला टच है ना, ये चला गया
0: तो मज़ा आता
1: है। वो काफ़ी अरसे से मैंने अब नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर बैठ के जो है तो किसी फीमेल की कोई लव पोएट्री टाइप से, तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन दे के बना देता हूँ। लेकिन मैं इसको दोबारा तो कुछ करूंगा। मुझे बहुत सारे मेरे फैंस टिकटॉक से कहते हैं कि यार आपकी वीडियो कोई उस तरह की नहीं आ रही, तो वो बनाऊंगा।
0: अच्छा, जहाँ पर अभी टिकटॉक की वीडियोस की बात हो रही है, आप ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वो मेरे एक दो और दोस्त भी हैं, मैं उनके बारे में आपके बारे में बात करता हूँ। यार ये लोग इतनी ट्रैवलिंग करते हैं यार, अपना जहाज खरीद ले जितना, जी कभी आज एम्स्टरडेम में, आज पाकिस्तान में, कल कराची में, कल लंदन में, कल दुबई में,
1: ऐसे ही खुद पता नहीं होता मैंने कब ट्रैवल करना है। मजे की बात बताऊँ आपको, अचानक होता है, बस अभी आपको बैठा हूँ, अचानक कोई मैसेज, कोई बात ऐसी होगी तो वही दोस्ती वाली बात है, तो टिकट करवा के निकल जाऊंगा।
0: गुड, तो मुझे बताओ इतने कंट्रीज आप घूमे हो, आप जब बाहर जाते हो तो क्या दुनिया से क्या सीखा आपने, लोगों से क्या सीखा?
1: यार लोगों से मैं आपको बाहर की दुनिया की बात बताऊँ तो जो हमें हमारा एक दीन कहता है ना, तो मुझे वो उनमें नजर आता है। बाहर के मुल्कों की बात करो, वहाँ से तो सीखने को ये मिलता है कि अब देखें हम में से आप भी अगर कल बाहर जाएंगे ना, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग अब तब क्रॉस करेंगे जब आपका सिग्नल ग्रीन
0: होगा,
1: और पाकिस्तान में अभी नहीं देखेंगे। तो वहाँ सीख तो ये मिलती है कि जिस तरह इंसानियत को लेके चलना है वैसे चलें। और बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पर आके मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वही मैं हूँ जो आइसक्रीम खा रहा है, तो अगर अगर मैं खाता नहीं आइसक्रीम तो उसका रैप गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा।
0: और हमें हमें बीइंग पाकिस्तानी बुरी लगती है, ऐसा क्यों है
1: कि यहाँ पे होते हुए जब हम देखते हैं,
0: हाँ ये पाकिस्तान में
1: हम बुरा ऐसे लगते हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है,
0: हाँ इसलिए प्यार है ना, हमें इसलिए बुरा लगता है,
1: हमें बुरा लगता है,
0: समझा समझा के थक गए।
1: मैं अक्सर मैं अक्सर कोई चीज मेरे साथ, आप भी कोई बात करो, कोई दोस्त को नीचे फेंक देना, मैं उठा के बिन में फेंकूंगा यार, ऐसे नहीं करो यार, जब तक हम लोग खुद सफाई नहीं करेंगे कोई आके हमारे लिए सफाई नहीं करेगा। तो मुल्क तो पहले है,
0: मुल्क पहले है,
1: मुल्क तो पहले
0: है, सारी बात है, हमारी पहचान पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान ना तो हम भी ना होते
1: ना, तो ये तो पहले होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए।
0: अच्छा, कुछ हम अब बातें करेंगे फिटनेस के हवाले से, क्योंकि आपका जिम से पुराना ताल्लुक है। मुझे बताएं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है और मीडिया लाइफ में फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: और इसकी मैं पहले पूरी बात कर लूँ कि दोदी खान ने पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है उस पर एक ट्रेंड सेट किया, ठीक है। मैं बहुत इनके बाद बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं अभी सिक्स पैक बनाते नजर आ रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको सोशल मीडिया फेसबुक पे बकायदा नजर आ रही हैं, टिकटॉक वगैरह पे, ये अच्छी चीज है, ठीक है। अगर एक इंसान ट्रेंड लेके आया है तो उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है बहुत सारे लोग, तो ये अच्छी चीज है, और वो सारे आपके सर्कल के लोग
1: हैं, वो इसमें कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है। मेरी जब सबसे सेटिंग होती है तो मुझे हमेशा कहते हैं कि दोदी यार ये क्या करना है और ये कैसे करना है,
0: हाँ।
1: तो मैं ऑलवेज उन्हें बताता हूँ यार भाई आप इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और ये जो अभी आपका जो क्वेश्चन था अपना कंप्लीट करें, मैं उसका जवाब दूंगा कि जो कितना इंपॉर्टेंट है फिटनेस।
0: हाँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी नॉर्मल लाइफ में फिटनेस कितनी जरूरी है और मीडिया इंडस्ट्री में फिटनेस कितनी जरूरी है। मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि मैं बहुत सालों से एक चीज मिसिंग देख रहा हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, कि हमारे जो, मैं किसी की वही बात करूँ, बुराई नहीं कर रहा, सारे अच्छा काम कर रहे
1: हैं,
0: लेकिन जब एक हीरो बड़ी स्क्रीन पे आता है तो आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड देख लें, उसके 6-8 पैक्स बने हुए हैं, मसल्स बने हुए हैं, तो प्रॉपर कुछ लोग श्रेडेड है, किसी ने बल्क किया, वो प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पे आपको हीरो एज ए हीरो नजर आता है। लेकिन जब हमारे जो मैं कई साल से बात कर रहा हूँ, जब हमारे कुछ लोग एक्टर्स जो है वो हीरो आते हैं, वो फुल स्लीव शर्ट पहन रहे होते हैं, खुली खुली शर्ट्स पहन रहे, तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उनमें हीरो वाला इम्पैक्ट नहीं आता। मेरा ये कहने का मकसद है
1: सन भाई, देखें कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि मैं अगेन फिर ये बात बोलूंगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है, اور جو ایکٹرز لوگ ہیں وہ بہت ڈرتے بھی ہیں. آپ کو کوئی پتا نہیں کہ آپ مال میں کہیں ہیں اور آپ کا ایک سین تھا جس میں آپ شرٹ لیس تھے, اچانک سے کوئی شخص آئے گا اور آپ کو تھپڑ مار دے گا کہ تو اتنا بے شرم ہے, تو ننگا ٹی وی پہ آتا ہے. تو یہ ہمارے ایکٹرز میں کہیں نہ کہیں ڈر ہے.
0: اچھا,
1: اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی ہیں. ہماری جو عوام ہے وہ اس طرح کی دیر کر جاتی ہے, اس ذہن میں بٹھا لے گا, وہ اپنا کسی اور جگہ کی کوئی گرج ہوگا, کچھ ہوگا, وہ آ کے نکال دے گا اس پہ اور یہ نہیں کرے گا. تو اب جیسے فہد بھائی کی میں بات کروں, میں حیران ہونا پڑتا ہوں میں اس بات پہ. وہ کسی شو میں کسی جگہ پہ گئے, انہیں شارٹس پہنے ہوئے تھے. یار مجھے کوئی بندہ بتا دے یار کہ اس کو ٹرول کرنے کی کیا تو بنتی ہے,
0: بس لوگوں کو ویوز چاہیے.
1: دیکھیں اب بات یہ دیکھیں کہ ہمارے ایکٹرز جتنے وہ اچھے ہیں ان کے لیے باڈی بنانا بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے خود ابھی کہا کہ اب سب بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ڈیئر کی ہے, میں تو چڈی میں بھی بنا کے ویڈیو ڈالی ہے جسٹ فار موٹیویشن. دیٹ واز اے موٹیویشنل کائنڈ آف ویڈیو. آف کورس جو جنہوں نے برا کہنا ہے تو آپ اگر فل کپڑوں میں بھی ہوں گے وہ برا بولیں گے, جنہوں نے سمجھنا ہے وہ سمجھیں گے, جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے. ایک بات تو پکی ہے, لیکن ایک چیز بڑی ڈیئرنگ یہ ہوگی ہماری انڈسٹری میں الحمدللہ, کیونکہ سارے جتنے بھی ہمارے کردار کرتے ہیں ایکٹر جتنے بھی ہیں, جب ایک ڈیئر کرتا ہے نا تو دوسرا کرتا ہے, دوسرے تیسرا کرتا ہے, اور اب سب کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی ڈیئر نہیں کیا کہ یار اپنے آپ کو ٹاپ لیس دکھائیں. کیونکہ ایک ڈر ہماری عوام بڑی انپریڈکٹیبل سی ہے, کسی ٹائم کچھ بھی کہہ سکتی ہے. تو وہ ایک
0: میں بتاؤں, میں فیصل قریشی کو دیکھ کے بڑا
1: میں بے روز ویڈیو پڑھی موبائل میں. میں نادیہ کے شو میں تھا تو نادیہ نے مجھ سے کچھ ایسے کوشچن کیے کہ اب مجھے ایکٹرس کے نام لیے کہ بتاؤ کس کو کتنے نمبر دو گے. تو فیصل بھائی کو میں نے 10 out of 10 دیے. میں نے کسی اور کو بھی لائک,
0: آپ نے دیکھا وہ پراپر پوزنگ کر رہے ہیں اس طرح پکچر.
1: ارے فیصل بھائی چھا گئے اور سب بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, لیکن فیصل بھائی کی اور ہمارے نوید رضا بہت اچھے ہیں,
0: دانش تیمور بڑا اچھے جا رہے ہیں.
1: اب اچھا بہت پرومیننٹ جو نظر آ رہے ریزلٹ نا, وہ فیصل بھائی کا اور نوید رضا کا آ رہا ہے. دانش بھی بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ. پھر ہمارے لائک جتنے بھی اور ہیں, جنید خان ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: سب ہیں تو اچھی ٹریننگ کر رہے, لیکن شاید ان کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ پراپر اس طرح,
0: لیکن چلے ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, سٹارٹ کر دیا,
1: اب کر رہے ہیں نا.
0: وہ سلو اینڈ سٹڈی ونز دی ریس, آئی سپورٹ, آف کورس
1: آئی بیلیو ان اٹ فار شور. یہ تو بات پرانی ہے لیکن سچ ہے.
0: اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو ویڈیوز میں کھانا کھاتے ہوئے بہت دیکھتے ہیں.
1: کھانا سب کھاتے ہیں,
0: دیکھ کھانا تو سب کھاتے ہیں, لیکن دودی خان بہت زیادہ کھاتا ہے.
1: میں بہت زیادہ کھاتا ہوں یار. دیکھو یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں واحد بھائی بھی جب اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو خیر یہ تو بہت, میں ایک بندے کو کہتا ہوں جو اچھا نہیں کھاتا وہ یہ نہیں کھاتا, یہ میرا بھائی ہر دفعہ مکر جائے گا اور پائے, اور آپ کو تو پتا تھا ڈائم آپ کے سب گند بلا کھا کے بولے میں نے صرف چکھا ہے, نیور مائنڈ. اچھا ہے ماشاء اللہ.
0: ہاں یہ بات مجھے آج پتا چلی.
1: او بھائی اللہ,
0: یہ واجد تو بڑا نیٹ کھانا کھاتا.
1: کہاں
0: پراپر مطلب کہ سٹیکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں,
1: سر سٹیک کھا کے گھر جا کے پھر کھائے گا نا, مسئلہ ہی ہے. رستے میں مجھے ملتے جائیں گے تو دیکھیں گے یار یہ بھی ذرا کھا لوں, تو میں وہ کھانے کی بات کروں. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, فٹنس سے اگر, یہ فٹنس سے بات ریلیٹ کرتی ہے, جو یہ اگین دیٹ از اونلی لائک مائی پرسنل لائک کہہ لو, اس کو اوپینین کہہ لو یا ایکسرسائز کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, لیکن میں ایک بات بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ کھانا چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو اگر اس نعمت سے نوازا ہے, آپ کو کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے, تو آپ سب کچھ کھاؤ. اپنے آپ کو زبردستی روکو مت کہ میں یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ کھاؤں گا تو وہ, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے, میں الحمد للہ پراٹھے ڈیلی, مکھن, گھی, کڑھائیاں, ابھی میں بہترین 2 روٹیاں دال کے ساتھ گھی والی دال سے کھا کے آ رہا ہوں, بہترین زبردست. اور کھانا اچھا کھائیں. ایک کوشچن آپ نے مجھ سے بھی کیا تھا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دا ایکسرسائز از ان ٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز, ایکٹنگ اور نارمل لائف. تو اب اس بات میں کھانے میں ان تینوں کا ایک ہی جواب ہے. دیکھیں آپ ڈیلی نہاتے ہو, ڈیلی تیار ہوتے ہو, اچھے کپڑے پہنتے ہو, پھر آپ کام پہ جاتے ہو اور ڈیلی کی روٹین والی چیز آپ کرتے ہو جو آپ کی روٹین لائف ہے. تو ایکسرسائز از آلسو یور روٹین لائف, میک اٹ لائک دس کہ آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی. میں 20 سے 25 منٹ گیم کرتا ہوں, آج آپ ٹریڈ میل پہ تھے, آپ میرا خیال وہیں پہ ہوں گے اور میری گیم ختم بھی ہوگی, میں چلا بھی گیا. جتنی دیر یہ ٹریڈ میل پہ تھے میں گیم ختم کر کے چلا بھی گیا. اب میرا جو ایک میتھ ہے, جو ایک اسٹائل ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں ہر کسی کو کہتا ہوں, میں آپ کو بھی آج یہ مشورہ دوں گا, آپ نے ٹرائی کرنا ہے کل سے اور مجھے اینڈ آف دا منتھ رزلٹ دکھانا ہے. آپ نے سارے مسل ڈیلی ٹرین کرنے ہیں.
0: اوکے,
1: سارے مسلس, ٹھیک ہے, لائک تین راؤنڈ رکھیں سارے مسل, ایک راؤنڈ میں سارے مسل, پھر دوسرے راؤنڈ میں, پھر تیسرے راؤنڈ میں, دین یو ڈن. اور ایک مہینے بعد اپنا رزلٹ دیکھیے اور ہر چیز کھانی ہے آپ نے, سب کچھ کھانا ہے. آپ مہینے بعد مجھے پھر یہاں بلائیں گے اور کہیں گے یار اب میں لائیو بیٹھا ہوں پوڈ کاسٹ میں اور میں شرٹ اتار ہوں, کیونکہ آپ آلریڈی بنے ہوئے بھی ہیں نا, اس لیے کہ آپ کو فریم آلریڈی اچھا بھی ہے, میں نے دیکھا بھی آپ کو.
0: ابھی تو دو سال سے میری انجریز چل رہی ہیں.
1: کوئی بات نہیں, وہ انجریز میرے اپنے شولڈر میں اتنی بری انجری ہے,
0: میری تو ایسی انجریز ہوئی نا, مسل لاس ہو گیا سارا. وہ جب لاسٹ ٹائم آپ کی میری بات ہوئی تو اس میں بات نہیں ہوئی. اچھا مجھے بتائیں کہ فیورٹ میل کون سا ہے آپ کا, سارا تو آپ کھاتے ہو, بیسٹ آف دی بیسٹ.
1: پراٹھے, قیمہ, قیمہ, پراٹھا, دودھ پتی, میرا شدید فیورٹ ہے. میں صبح دوپہر شام, میں یار میں آپ کو مزے کی بات ہوں, میرا جو ناشتہ ہے نا
0: پہلوانوں
1: والا, مجھے ہاں مجھے یاد بھی نہیں کتنے سالوں سے سیم ناشتہ ہے میرا. لائک مجھے 12 انڈے تو کھانے ہی کھانے ہیں, اس میں پراٹھے ایڈ کرنے ہی کرنے ہیں, بریڈ بھی ایڈ ہو جاتی ہے بیچ میں, شہد تو میں پاگلوں طرح ڈھونڈتا رہتا ہوں, گھی بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں, جو میں نے گھی اوپر ڈالنا ہے کچا اور پھر کھانا ہے, تو میں تو وہ بہت فیوریٹ ہے میرا. اور میں ویسے اس طرح فوڈ ہی نہیں, مجھے دال سبزی چاول روٹی کچھ بھی مل جائے میں کھا لیتا ہوں, میری کوئی ایسا ہی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ مجھے اسپیشلی کچھ. اکثر میں نے دیکھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شوق ہے مزے مزے کی چیزیں پکوا کے کھانے کا, مجھے جو مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں, میرے اندر وہ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن میں کھاتا ضرور ہوں.
0: اوکے, اچھا مجھے بتاؤ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, یہ جم کا لائف اسٹائل جو ہے یہ سستا ہے یا مہنگا ہے؟
1: اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, دیکھیں اگر تو آپ پروفیشنلی کر رہے ہیں نا پھر تو بہت مہنگا ہے, پھر تو یہ پاکستان میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس کو پروفیشنلی آپ اس چیز کو چوز کرو, کہ پھر تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے نا وہ آج کل کے حساب میں میرا خیال ہے کوئی 3 سے 4 لاکھ کی چلی جائے گی, صرف ڈائٹ کی بات کروں, اس میں امینوز اور وائٹمنس چھوڑ کے.
0: یہ آپ باڈی بلڈنگ کی بات,
1: باڈی بلڈنگ کی بات.
0: اور ایک ہے فٹنس, جو
1: دیکھیے فٹنس بیسکلی کیا ہے, فٹنس تو رننگ کر رہے ہیں نا آپ, سوئمنگ کر لیں, رننگ کر لیں, بات ختم ہوگی.
0: لیکن آج کل کے لڑکے جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے کریٹین بھی لینا ہے, پری ورک آؤٹ بھی لینا ہے, ملٹی وٹامن لینے ہیں, فش آئل بھی لینے ہیں, ساری چیزوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں.
1: ہاں تو آف کورس, اب بات یہ ہے, اب میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں, اسی لیے میں ان سب کو کہتا ہوں سب کچھ کھاؤ, کھانے میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. جب آپ 3600 چیزیں نہیں کھاؤ گے تو اس کے وائٹامنس لینے پڑیں گے نا, تو بہن آپ کھانے میں لے لو, آسان بھی ہے, کھانا بھی ہو جائے گا.
0: لوگوں سے کھانا نہیں کھایا جاتا نا,
1: بس وہ حیران کی ہے, میں تو کہتا ہوں کھاؤ.
3: وہ ریزلٹس مانگتے ہیں, ان کی شرڈ ہونی چاہیے باڈی, وہ مسکولر پہ جاتے نہیں ہیں, تو وہ پھر اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نیچرل کھانا کھائیں گے, نیچرل کھانے کے بعد ان کے مسلز ہی نظر آئیں گے. وہ فٹنس الگ چیز کو لیتے ہیں اور پروفیشنل چیز کو, دونوں کو وہ مکس کر جاتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں آ گئیں, ایک فٹنس آ گئی, ایک پروفیشنل سائڈ آ گئی. جیسے ابھی دودھی جہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے یہ پروفیشنلی بھی کر رہا ہے اور فٹنس بھی کر رہا ہے, مگر جو نیچرل پہ آتا ہے تو نیچرل کے اندر جس ٹائم پر آپ نے نیچرل کھانا کھانا ہے تو اس میں آپ کا رزلٹ لیٹ آئے گا. جہاں پہ آپ 6 مہینے کے اندر ریڈی ہوتے ہو, آپ ہو سکتا ہے 1.5 سال میں ہو, تو وہ بھی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ یار جلدی سے ہمارے 6 پیکس آ جائیں گے, مسلس کلیئر ہو جائیں گے, تو وہ نہیں ہوتے, وہ پرابلم یہ ہے,
0: ٹائم لگتا ہے,
3: بہت ٹائم لگتا ہے.
0: اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جم کیوں, جم جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بڑا سمپل سا سوال ہے لیکن اس کے پیچھے ایک سائنس ہے پوری.
1: دیکھو
0: پہلے آپ آنسر کرو, پھر میں اپنا ویو آپ کو دیتا ہوں.
1: نہیں آپ پہلے ویو دیں اس کے بعد آنسر.
0: دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں, جس طرح اگر میرا کوئی گول نہیں بھی ہے, میں جم میں ڈیلی 1 گھنٹہ جا رہا ہوں, ایک تو میری مینٹل فٹنس ہے, ٹھیک ہے, میرا سوچنے کا انداز بدلتا ہے, میں ریلیکس فیل کرتا ہوں, میرے مائنڈ کے اندر 100 سٹریسز چل رہے ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, اور میں سارا دن ایکٹیو رہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟
1: آپ نے یہ بالکل ٹھیک بات کی کہ ٹریننگ کرنے سے ہوتا کیا ہے. کوئی بھی ٹریننگ ہے, جم کو میں اس لیے کہوں گا کہ جم آج کل ٹرینڈنگ ہے,
0: ٹرینڈنگ ہے,
1: ٹھیک ہے. تو دنیا چلتی ہے ٹرینڈ کے اوپر موسٹلی. لیکن جو لیجنڈز ہیں وہ آپ کو پتا ہے ان کا ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ جم, پھر بھی انہوں نے گھر میں سیٹ اپ بنایا ہوا. میں آپ کو, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بہت لائک لیجنڈز ہیں ہمارے, وہ دنیا میں یہی شو کر رہے تھے کہ ہم لوگ لائک گراؤنڈ ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ان کے گھر میں بھی جم بنے, ٹھیک ہے. میں نے خود کہیں کو بنوا کے دیے. اب دیکھیں, جب آپ جم جاتے ہو نا تو ایک چیز تو بڑی ایزی ہو جاتی ہے کہ جب آپ فورس کرتے ہو نا, فورس کیا چیز ہے؟ فورس آپ کی تب ہی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کے مائنڈ پہ ایک سٹریس ہوتا ہے, ایک بوجھ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی سے آپ ڈسکس کر رہے ہو, آرگیوز چل رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایک آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو اپنی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہو. اگر آپ کوئی بھی چیز ٹریفک میں پھنس گئے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہاں سے نکلنا ہے, تو اس میں بھی آپ کے اوپر ایک پریشر آنا شروع ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, جب آپ جم جاتے ہو, جو میں دیکھیں, ہر انسان نے اپنے آپ کو اپنے طریقے سے ایک موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو, ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا. لیکن جم ایک ایسی چیز ہے, جب آپ وہاں جاتے ہو نا تو آپ کو ایک تو کمپٹیشن ملتا ہے وہاں پہ, آپ کسی کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہو, کسی کو دیکھ کے جیلس ہوتے ہو, کسی کو دیکھ کے کہتے ہو شوق ہوتے ہو یہ آ سکتا تو میں بھی آ سکتا ہوں, کسی کو دیکھ رہے ہو جس کو اٹینشن زیادہ میری تو ایک جیلسی آ جاتی ہے, ایک پروفیشنل جیلسی اس کو کہہ سکتے ہو, اور کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہو رہے تھے کہ مجھے اس طرح ہونا ہے. تو یہ آپ کو ایک چھت کے نیچے بہت ساری ورائٹیز ملتی ہیں پہلے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو وہاں پہ ٹارگیٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار آپ نے اتنے ٹائم پہ اتنے, اب ٹرینر لیتے ہو, ٹرینر آپ کو آ کے موٹیویٹ کرے گا کہ یار آپ نے اتنے ریپس لگانے ہیں, اتنے سیٹ لگانے ہیں, تو ایک ٹارگیٹ مل جاتا ہے. دیکھیں زندگی میں کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس فوکس ہے, ٹھیک ہے, جس کا ایک ٹارگیٹ ہے, جس کی اچیومنٹ, جس نے کچھ اچیو کرنا ہے. تو اب ان سب چیزوں کو آپ ایک چھت کے نیچے ملتی ہے وہ جم, ٹھیک ہے, آپ کو فوکس مل رہا ہے, آپ کو اینگل ٹھیک کرنا ہے, آپ کو ویٹ پراپر اٹھانا ہے, ویٹ کو لاک کرنا ہے گرے نہ, پھر آپ نے ریپس نکالنے ہیں, ریپوٹیشن پوری کرنی ہے آپ نے, پھر اس میں آپ کی برننگ ہو رہی ہے تو آپ کو پین کا بھی آپ کو فیل آ رہا ہے کہ پین کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹیمنا لوز ہو رہا ہے.
0: پین کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے,
1: پتہ چلتا ہے نا. دیکھیں اسٹیمنا آپ بلڈ کر رہے ہو, پین کی ریزسٹنس آپ کی اچھی ہو رہی ہے, فوکس آپ کا اچھا ہو رہا ہے, اس کے بعد چیلنجز آپ کو مل رہے ہیں جم کے اندر. تو ایک چھت کے نیچے جب اتنی چیزیں مل رہی ہیں تو وائی ناٹ. پھر اس کے بعد جب آپ ٹریننگ کر لیتے ہو, اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی سیٹسفیکشن جب کسی بھی ایک کام میں ہوتی ہے نا, تو آپ کے اوپر اگر 99 قسم کی سچویشنز آئی ہوئی ہیں نا, ایک کام میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, تو ایک ہیومن سائیکل یہ کہتا ہے الحمد للہ یار آئی ایم فائن, ریلیکس یار, شکر ہے یہ ہو گیا, لائک ایک آہ سانس بھرتی ہے, نکلتی ہے کہ یار اوکے ناؤ آئی ایم فائن, ٹھیک ہے.
0: آپ کا ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے, آپ سب نے مل کے ایک جم بنایا, آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں,
1: الحمدللہ.
0: کیا سوچا جم, جم کے بزنس میں کیوں آنا ہے, کیوں جم کیوں بنانا ہے؟
1: یار یہ مجھے اس کے لیے علی بھائی کو ساتھ لانا چاہیے تھا, جو ہمارے سی ای او بھی ہیں, ہمارے
0: فاؤنڈر بھی ہیں.
1: میں اچھا میں ان کے ساتھ آنا چاہوں گا آپ کے یہاں پہ, کیونکہ علی بھائی از مائی ٹرینر ایز ویل, اور وہ ڈاکٹر بھی ہیں, اور پھر وہ ورلڈ باڈی بلڈنگ فیڈریشن میں بھی ماشاء اللہ ہیں, اور ابھی وہ تنزانیہ گئے ہوئے تھے, پھر موراکو گئے ہوئے تھے, تھرڈ پوزیشن لے کر آئے ہیں. تو وہ تو ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے. میری جتنی بھی ٹرانسفارمیشن ہے یہ علی بھائی نے کروائی ہے, اور میرے میلز انہوں نے ڈیسائڈ کرنی, اور انہیں پتہ ہے کہ میں سب گند بلا کھاتا ہوں, اس حساب سے انہوں نے میری, مجھے بتانا ہے کھانا ہے, کھائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے اتنا کھانا ہے. پھر اس میں انہوں نے مجھے بتا کے رکھا کہ پروٹین آپ نے پر ڈے کی کتنی انٹیک کرنی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کاربس کتنے کھانے ہیں, تو ویٹ کو گین کرنا ہے, پھر ویٹ کو لوز کرنا ہے, تو یہ آسان چیز نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو پراپر ایک پراپر پروفیشنل بندہ چاہیے
0: آبویسلی.
1: اور میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہنا چاہوں گا کہ علی بھائی سے سب کانٹیکٹ کریں, کرتا نہیں کسی سے, اور میرے ریفرنس سے کریں, وہ آپ کو پیری کنسلٹیشن فری کر دے گا. ویسے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے, بہت چارج کرتا ہے, میں بھی پے کرتا ہوں اس کو, چارج وہ بہت کرتا ہے, لیکن رزلٹ اچھا دیتا ہے, آپ کو نیچرل بنائے گا اور مزہ آئے گا.
0: آپ کے جو بھی دو تین ٹرینرز رہے ہیں انہوں نے رزلٹ بہت اچھا دیا.
1: آف کورس زاہد بھائی
0: پروفیشنلز ہمیشہ پروفیشنل ہوتے ہیں.
1: ایسے دیکھیں میرے سب سے پہلے میں نے جو ٹریننگ اسٹارٹ کی, کوچنگ میں نے کروائی, تو وہ زاہد خان ہے, तो उनसे मैंने ली और उनका F7 में जिम था, मसल में नहीं आएगा इसमें अगर जाहिद भाई, माशाल्लाह जाहिद भाई एक नाम है यार, मैं तो अभी भी उन्हें मैंने आज कमेंट किया कि भाई वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जाहिद भाई जब मुझे कमेंट करते हैं, तो मैंने कहा उस्ताद जी आपको भाई अगर आपको छा गया तो भाई को मिल भी लो, तो वो वादा करता है मिलता नहीं, वो वाहिद बंदा है तो उन्हें मिलना चाहिए। तो जाहिद भाई ने मेरी पहली जब मैं इंडिया गया था 2019 में, तो मेरी जो फिजीक जितनी भी सब थी वो जाहिद भाई ने की। फिर ऑफ कोर्स फिर मैं क्योंकि अली भी के ज़्यादा करीब हूँ, घर साथ है हमारा और जिम करीब है, जाहिद भाई वहाँ से शिफ्ट हो गए फिर G10 चले गए, तो टाइम मेरा उनसे मैच नहीं हो पा रहा था। फिर उनकी लाइफ अपनी इतनी बिजी जा रही है कि उनके पास जो उनके टाइम फ्री था मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर मुझे अलहमदिल्ला लकीली अली भाई फिर मिल गए, फिर अली भाई को मैंने बिठा के सारा बताया और मैंने बताया अली जाहिद भाई के ये ट्रेनिंग मेरा स्केड्यूल था, फिर अली भाई ने उसमें मजीद एडवांस चीज़ें डाली और उन्होंने कहा इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, बहुत टाइम लगा। ट्रेनर आपके लिए एक टीचर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जहन में रखें कि टीचर आपका वो जो पढ़ा लिखा हो।
0: और अब कम टू द पॉइंट, जिम इसलिए खोला और एक्सपेंशन इसलिए कर रहे हैं लोगों की लाइफ बेहतर हो,
1: बेहतर हो। और मैं तो इस चीज़ में अली भाई को
0: काफ़ी आपने कंपटीशन दिया मार्केट में,
1: बहुत अलहमदिल्ला जी, वी आर द बेस्ट बाय द वे, अलहमदिल्ला 24/7 की सर्विस है और हमारा जितना इक्विपमेंट है सारा इम्पोर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे जो ट्रेनर्स हैं सारे एजुकेटेड हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं सारे, और जितने भी हमारे पास जितने जिम में लोग आते हैं वो सीख कर ही जाते हैं, क्योंकि अली भी खुद डॉक्टर भी है, तो इसलिए उसका वो वैसे ही खिदमत खल्क में बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो बचपन से एक प्रोफेशन ही से डॉक्टरी को उठाया, हालांकि वो उनकी फैमिली पूरी आर्मी से बिलोंग करती है, तो वो आर्मी भी ज्वाइन कर सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने मेडिकल फील्ड चूज़ की और वो बहुत माशाल्लाह हेल्प करते हैं लोगों की। जिम में जो भी आता है वो एडवाइस भी करेंगे, टिप्स भी देंगे, बताएंगे भी, और उन्होंने जिम का फीसेस बहुत कम रखी हुई हैं, पैकेजेस बहुत अच्छे रखे हुए हैं। हम ये नहीं कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह पाक ने रोजी रोटी लगाई हुई है और चीज़ों से हमें पैसा आ जाता है, घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। बिजनेस ये जिम ये नहीं मैं कहूँगा कि हम लोगों ने कोई सदका जारिया किया है, डेफिनेटली वहाँ पे भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज हैं, रेंट हैं, बिजली के बिल और सब चीज़ें, मशीनरी एवरीथिंग, तो हम जिम से उतना ही कमाते हैं कि जिसमें हमें जिम में इन्वेस्ट ना करना पड़े,
0: एक्सपेंसेस सारे निकलते
1: एक्सपेंसेस निकलते हैं और हमारे पास मैक्सिमम जितने लोग आ सकें, और जो हमारे एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जिम आता है तो वो फिर जाता नहीं है, उसकी वजह है कि एक हमारा एटमोसफियर अच्छा है, फिर उसके बाद 24/7 की सर्विस बहुत अच्छी है, तो हमारे पास बहुत सारा बहुत लोग ऐसे हैं जो रात की शिफ्ट करते हैं और वो गरीब फंसे होते हैं यार कहाँ जाएं, तो वो अलहमदिल्ला हमारे पास G11 है, G10 है, F11 है, फैसल टाउन है, बैरियर टाउन है, BWD है, तो सारा I8 भी अलहमदिल्ला, तो सारा कवर किया हुआ है हमने इस्लामाबाद बिल्डिंग, तो अच्छे लोग आते हैं,
0: लगता है अभी अनकरीब पूरे पाकिस्तान में हर जगह आपकी
1: चांस
0: भी जिस तरह एक्सपेंशन कर रहे हैं।
1: मैं बाद में कराची में देख रहा हूँ अभी, मेरा मैं अली भी से मेरी मुलाकात नहीं हुई पिछले एक हफ्ते से, हम इंग्लैंड में इकट्ठे थे, अली भी आए थे मेरे लिए वहाँ पर, अपने शो भी अटेंड किए थे, तो मैंने उन्हें एक जगह मैंने बताई कराची में, तो इंशाल्लाह वेरी सून मेरी कोशिश है कराची में भी ग्रेट फिट को स्टार्ट किया जाए
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा लिसनर्स, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और अभी भी बहुत बातें रहती हैं,
1: बातें तो बहुत है, टाइम कम है यार,
0: टाइम कम रह गया, आप लोग कॉल्स कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कुछ कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल कर सकें, 051-111-111 एंड 051-920-2540 पर, मैं रिपीट करता हूँ 051-111-111 एंड 051-920-2540, आप कॉल कर सकते हो और प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ साथ हम बातें करते रहेंगे और साथ साथ जो है कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करें। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि किसी फैन से आप बहुत ज़्यादा मिलके सरप्राइज हुए हो और उससे कुछ सीखा हो, फैंस होते हैं ना आपकी जिंदगी में, आप तो आपको खैर बहुत फैंस ही फैंस हैं, और
1: यही वजह है यार अपनी जिंदगी ऐसी है कि किसी से कुछ ऐसा सीखने को मिला नहीं, लेकिन फैंस हाँ मुझे उनका प्यार देख के उनकी शिद्दत देख के बहुत अच्छा लगता है, वो एक सीख मिलती है कि यार आपको सबके साथ ऐसा होना चाहिए, सबसे ऐसे प्यार से मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली किसी एक बंदे से नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह आप किसी को मिलते हो, अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो, तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट एक बार कर दें कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग और यू डूइंग वेल माशाल्लाह, तो एटलीस्ट वो आपको अच्छा लगता है।
0: क्रेजीएस्ट फैन आपका, फैन मोमेंट को क्रेजीएस्ट हो?
1: यार वो मैं यहाँ बता नहीं सकता।
0: इसके साथ काम करना, वैसे तो आप सबको पसंद करते, मुझे
1: मैं सबको जानता हूँ और पर्सनली जानता हूँ, बताऊँ की ऐसा भी नहीं है की किसी को मैं उस तरह जानता ना हूँ। कुछ एक दो तीन होंगे जिनके साथ मेरी सिटिंग नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली वो मुझे भी जानते हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, हमें नेचर भी पता है एक दूसरे की, लेकिन वो कभी टाइम इस तरह का बना नहीं कि हम लोग कहीं पर इकट्ठे बैठ सकें और गप लगा सकें। तो यार मेरी सबसे ख्वाहिश है क्या किसी एक का कैसे नाम लूँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक का नाम लूँगा तो फिर मैं खुद गिल्टी हो जाऊँगा कि यार मैं तो उससे भी करना चाहता हूँ, मैं उससे भी करना चाहता हूँ, तो सब हैं, सबके साथ करना,
0: सबके साथ, सारे सारे दोस्त हैं,
1: सारे, हाँ,
0: किसी को नाराज नहीं करना,
1: नहीं नाराज नहीं, नाराज नहीं, उसमें देखें
0: सारे वही बात है ना, सारे अपनी अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं,
1: इतना अच्छा काम करते हैं सब, और मुझे जैसे अभी तक जिन जिनसे मैंने काम किया है इतना मुझे तो सीखने को मिलता है हमेशा उनसे, मैं बहुत सारी चीजें जो है तो स्क्रिप्ट में उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उनसे सीख लेता हूँ और मजा आता है, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यार। आप मुझे बताओ मैं किसी एक को कैसे सिलेक्ट करूँ, हमारा हर एक्टर इतना अच्छा, इतना मजा है कि लालच ये होती है कि यार बार बार इसे काम किया जाए, तो मजा आता है। फिरोज के साथ मैंने काम किया, मैंने दो प्रोजेक्ट फिरोज के साथ किए हुए हैं, दानिश के साथ किए हुए हैं, जिब्रान के साथ किया हुआ है, एहसन के साथ किया हुआ है, फैसल भाई के साथ किया हुआ है, और कौन बड़े नाम है, जुनेद के साथ अभी कर रहा हूँ मैं, फहद भाई के साथ कर लिया है, महवेश के साथ कर लिया, सबा के साथ कर लिया, लाइक सबके साथ ऑलमोस्ट, लाइक अब मायू भाई रहते हैं, जो रहते हैं उनका, हाँ जो रहते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ उनके साथ काम करना है, तो मायू भाई साथ करने का ऑफकोर्स बड़ा दिल है कि उनसे किया जाए।
0: जवानी फिर नहीं आनी थी तो नहीं आ रही
1: यार, मायू भाई ध्यान दे जरा,
0: बड़ी मजाइया मूवीज थी, मतलब कि उसमें वो मजाइया भी थी और उसमें कोई मैसेज भी था।
1: यासिर हुसैन के साथ बड़ा दिल है काम करने का, लेकिन उनसे दिल है स्टेज करने का, वो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो अभी तो उनका ख़त्म हो गया, मैं डेफिनेटली उनसे नेक्स्ट जब मिलूंगा तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे कोशिश करें कि अपने स्टेज पर मुझे मौका दें काम।
0: अच्छा, स्टेज बड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म,
1: बहुत ज़्यादा।
0: हमजा अली अब्बासी जो है वो एक्टिंग में आने से पहले वो स्टेज करते थे, उसके बाद फिर वो एक्टिंग में आए, तो ऐसे यासिर हुसैन की आपने बात की, कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं जो स्टेज करके आए हुए हैं और ऑन एंड ऑफ करते भी रहते हैं,
1: करते भी
0: और लोग देखने भी जाते हैं।
1: ऑफ कोर्स बड़ी दुनिया स्टेज वाली, जैसे एफएम को सुनने वाले बहुत लोग हैं, जो कि शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार एफएम पे लिसनर्स नहीं है, ऐसा है नहीं है, लाइक बहुत सारे लोग अभी भी सुनते हैं और स्टेज बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, हमारे टीवी के जो हमारे अदाकार वो देखने जाते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी हमारी मेरी जो जोम्बी टीम थी वो सब थिएटर के एक्टर हैं,
0: और थिएटर का बड़ा मंजा वो एक्टर होता है,
1: ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें आपको उस चांस नहीं, रीटेक नहीं है, और आपने हॉल में आखिरी कुर्सी वाले तक भी आवाज भेजनी है अपनी, तो क्या करोगे आप, वो 40 मिनट की परफॉर्मेंस है,
0: ऐसा ही
1: पूरी एनर्जी के साथ आनी है वो।
0: तो दोदी मुझे बताओ कि दोदी खान बन गए, इस पूरी जर्नी में फैमिली के अलावा सबसे ज्यादा किसे सपोर्ट किया?
1: यार इसमें काफी नाम है, एक नहीं है ना, इसमें फैमिली तो ऑलवेज आपको पता है,
0: फैमिली तो ऑलवेज
1: है, हाँ वो तो होती है। मुझे इसमें मेरे बड़े प्यारे मोहसिन हैं, अच्छा जो जिन्होंने सपोर्ट किया वो मोहसिन ही है, सारे एज में भी बड़े हैं, उस्ताद भी हैं, सिखाए भी है, शौकत भाई हैं हॉलैंड से, फिर हमारे कराची में बिलाल भाई हैं, बिलाल बीगू के नाम से सब उन्हें जानते हैं, वो हैं, वो तो बहुत लाइक इवन अगर आप नोट करें तो आज मैं आपने मुझे कहा सैंडो पहन के नहीं तो मैं आज पोलो पहन के आया हूँ, नॉर्मली मैं सैंडो पहनता, लेकिन बिलाल भाई ने काफ़ी ड्रेसिंग वगैरह मेरी चेंज करवाई, नबील भाई हैं, नबील जफर और मेरे बहुत बहुत बहुत बहुत अजीज भाई हैं, हसन ज़िया भाई, तो वो मैं लाइक ये मेरे गुरु भी हैं नबील भाई भी, हसन भाई भी, इनका मीडिया से ताल्लुक़ है और इनसे मैं सीखता भी हूँ। जिब्रान, सैयद जिब्रान, उससे
0: बहुत करीबी दोस्त,
1: उससे मैंने बहुत,
0: अच्छा आपने, मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस देखी उनको, आपने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह वो जिम स्टार्ट करें,
1: यार वो बड़ा वो बड़ा बेस्ट बंदा है, वो मुझे वो बड़ा सीधा और ऑनेस्ट बंदा है, वो क्या कहता है, कहता है यार मुझे बात एक बता, अगर ये सब कुछ खा के और इस तरह का रह के भी मुझे काम मिल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है मैं तेरी तरह अपने आप को मुसीबत में डालूं, तो मैं चुप कर जाता, मैं उसको क्या कहूं, अब उसको प्रोस्पेक्टिव ही टोटली डिफरेंट है, वो कहता है यार मैं एक एक्टर हूं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलता है, मेरी एक्टिंग में मिलता है, मेरी बॉडी में नहीं मिलता, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन जिब्रान की एक बात है, जिब्रान को मैं क्योंकि बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है इसका, अगर आप उसको 3 महीने दो और एक प्रोजेक्ट दो, लेकिन ये जो वो मेरे से भी अच्छी बॉडी बना के आएगा, वो इस तरह का बंदा है और मुझे पता है, मैंने एक प्रोजेक्ट उससे बनाया हुआ, इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है, बहुत सालों से किया हुआ है और वो हम कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं, जिस दिन वो होगा तो मैं आपको आज आपके शो पे बता रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँगा कि हसनैन जिब्रान को 3 महीने बाद देखना
0: नहीं, जिस तरह वो अपने ड्रामास के रोल्स में गेटअप चेंज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके दोस्त हैं वो फिर क्यों नहीं करेंगे।
1: हाँ वो मुझे पता है, वो कहते हैं यार मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए करूँगा, मुझे लाइक वो सेटिस्फाइड है अपनी बॉडी के साथ, वो ऐसे अब जैसे वाहिद भाई हैं ये ऐसे खुश हैं, तो मैंने कहता हूँ अभी सिक्स पैक निकालो, वो ये करो वो करो, कहते हैं भाई मैं यूं ठीक हूँ तेरी को जा खुदा हाफिज़ चला
0: जा। अच्छा मैं लिसनर्स और व्यूअर्स को एक बात बताऊं कि दोदी खान, माजिद खान, वाजिद खान इनके भाई हैं और तारिक खान इनके बड़े भाई हैं,
1: हमसे जुड़ा ज़ोहेब खान,
0: ज़ोहेब खान
1: फिर उससे जुड़ा रुमेल है, फिर राहिल है, वो एक एक लिस्ट बहुत लंबी है, तो अभी जो बैठे नहीं
0: हैं यहाँ पर है ना इसलिए भी शाम आपने, इन तीनों भाइयों को जिम की वजह से खास तौर पे और इनके स्टाइल की वजह से सारे इस्लामाबाद जानता है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ऐसे ही है ना,
1: ऐसे ही
0: और अभी से नहीं पिछले कई सालों से, तो होती ना कि इंसान की पहचान होती है
1: ऐसे ही है,
0: तो ये है कि ये अच्छी चीज है, ये लोग फिटनेस को प्रमोट करते हैं, लोगों को लेके आते हैं कि यार फिटनेस की तरफ आओ। ओके जी चले जी कॉल्स को साथ साथ शामिल करते देखते हमारे साथ 0511111111 All right, जी 0511111 and 0519202540 line जीना मुश्किल होगा, तो वहाँ से ये तहरीक निकलनी ही थी, बल्कि ये तहरीक बहुत पहले से सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो चुकी हुई थी, इनके एक रोड फोर्स है। अच्छा चलें अभी हम कॉल की तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि कोई ऐसा रोल जो आपको मिला हो जो आपने जिसको ना कर दिया हो लेकिन लेटर ऑन सोचा कि नहीं यार मुझे करना चाहिए था,
1: वैसा मैं एक एक अभी ड्रामा बना था यार मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, ग्रीन का था वो, जिसमें बड़ी मार धाड़ जंग थी, क्या था यार उसमें, नहीं ग्रीन का ही था, एनीवेज एक ग्रीन का प्रोजेक्ट था, उसमें एक कैरेक्टर जिसमें नुमान भी थे और हमारा वो एक बड़ा प्यारा पठान एक्टर है यार, इसको यार मैं नाम बड़ा मेरा इशू ही, एनीवेज एक ग्रीन का प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे उन्होंने अप्रोच किया और एक वो कैरेक्टर था, मैंने वो प्रोजेक्ट ही नहीं किया, तो ये नहीं कि यार मेरे पास असल में टाइम नहीं था, तो मेरा उस टाइम मैं चाह रहा था फिरोज के साथ हमराज और दानिश के साथ मनमास बना, तो मैं उस दिन कराची की फ्लैट में था, तो मैं कर नहीं पाया, वो मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए कर रही, उस प्रोजेक्ट में बड़ी डेयरिंग चीज़ें थी जो मुझे पसंद है और बस वो मैं नहीं कर पाया।
0: एक ग्रीन से मुझे याद है कि एक आपने कबड्डी के रोल वाला एक ड्रामा किया अखाड़ा,
1: अखाड़ा वो कुश्ती वो पहलवान,
0: पहलवान उसमें मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा आपके ऑपोजिट साइड पे जो एक्टर थे,
1: नहीं नहीं नहीं वो है
0: जिनकी बड़ी हाइट है,
1: हाँ बड़ा स्मार्ट लड़का है,
0: दो ट्विंस भाई
1: भाई दोनों,
0: तो
1: شراز نہیں
0: نہیں میرے بھی ذہن میں اس طرح
1: یار میں نام
0: حالانکہ بڑے اسمارٹ ہیں دونوں بڑے
1: بہت میں آپ نے کیا کس بندے کا ذکر کیا اب میں کیونکہ ایم ایم اے سے بھی میرا رہا ہے تعلق تو میں نے فراز فاروقی فراز کو میں جب ملا اچھا یار وہ بڑا اللہ والا بندہ ہے ماشاء اللہ اس سے تو آپ بیٹھو تو بہت مزہ آتا ہے اچھا میں نے اس کو فراز بھائی کو ایک بات بولی میں کہا فراز بھی ہمارے جو لیجنڈ ہیں وسیم عباس صاحب تو میں تو بہت بڑا ان کا فین بھی ہوں وہ یہ کہ میں نے فراز سے کہا فراز بھائی ہم اکھاڑا میں اتریں گے اور گراؤنڈ پورا میں نے خود سیٹ کیا کیونکہ لاہور میں جو علی ہیں پہلوان ٹھیک ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ساری لاہور کی ٹیم تھی وہ پراپر پہلوان فیملی ہے سارے بھائی کزن تھے ہم نے پوری گوڑی ووڑی کر کے اس کو نرم کیا مٹی کے تو میں نے فراز سے کہا فراز بھائی آپ نے ڈرنا نہیں ہے مجھے جتنا مرضی ہے مارنا کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب میں آپ کو پٹھوں گا نا تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے اپنی باڈی کو اسٹف نہیں کرنا میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا لائک زمین پہ میں آپ کو پٹھوں گا بٹ آپ کو لگے گی نہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ عموماً اگر آپ کسی کو اب دیکھو بچہ ہے نا اب بچوں کو ہوا میں پھینکو نا جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو سمجھ نہیں ہے وہ بڑا فلیکسیبل سے کرتا جائے گا کرتا آ جائے گا اب جو بچہ پانچ چھ سال کی عمر والے کو آپ اوپر پھینکو گے نا وہ ایک دم ایسے اکڑ جائے گا اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے وہ اور وزنی ہو جاتا ہے لیکن آپ ہلکے رہو ایزی رہو ریلیکس باڈی رکھو تو آپ بہت ہلکے سے رہتے ہو تو وہ ہماری جو دو دن کی تین دن کی کشتی تھی وہ ہمیں مجھے بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا وسیم عباس صاحب نے ہم دونوں کو ہی بات ہوئے کہتے ہیں یار کہ تمہاری کشتی اس گرمی میں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں کہیں بھی کچھ نقلی نہیں ہو رہا تم لوگ کیسے کر رہے ہیں تو میں نے کہا سر آپ بیٹھے ہیں کوشش اس لیے کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وسیم عباس صاحب بیٹھے ہیں تو کوشش ہم نے پوری کی لیکن فراز از مائی گاڈ ٹو گڈ
0: ان کے ڈرامے ڈرامے بھی کافی اچھے
1: وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کو میں نے لائک ہم نے کیا کشتی کی یار کیا باڈی ہم نے بنائی مزہ آ گیا تھا بہت مزہ
0: اچھا انہوں نے بھی اپنا اپنے آپ کو شریڈ
1: کیا تھا اس نے
0: اچھا یہ تھوڑا ویورز کو بتائیں کہ جو جن کے اچھی فزیک ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو شریڈ کرتے ہیں ٹی وی پہ آنے کے لیے اس کے پیچھے کیا لاجک ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ٹی وی پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں
1: بڑے
0: بڑے نظر آتے ہیں
1: آپ کو میں ابھی جس ویٹ میں ہوں ابھی میرا 88-87 ویٹ چل رہا ہے تو ابھی میں اسکرین کے لیے پرفیکٹ ہوں لیکن جیسے میں فلم میں آیا ہوں اب میری انٹری دیکھیں تو اس میں میں اتنا کچھ چوڑا ہوں اب اس میں میرا 99 کے جی ویٹ ہے حالانکہ وہ مسل ویٹ ہے پیٹ نہیں نکلا ہوا لیکن اس میں اگر میں پہلے سین میں جہاں میں کھڑا ہوں تو آپ وہ دیکھو کہ ایک اتنا بڑا مسل ٹی وی کی اسکرین پہ لانا
0: وہ نہیں آ سکتا پاسبل نہیں ہے
1: دیکھو پاسبل تو خیر ہے
0: اس طرح بہت آپ بہت براڈ لوگ
1: ہاں وہ ہوتا ہی کہ دیکھیں ہمارے آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگ کھڑے نا وہ بہت پتلے لگتے ہیں وہ ایک بڑا آڈ سا سین ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا جائنٹ کھڑا ہے بیچ میں اور باقی سب چھوٹے چھوٹے تو وہ ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کاسٹ نہیں کرتے
0: اچھا دو جی پتہ نہیں ٹائم کا مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم بڑا کم رہا ہے کہ مجھے دو تین چیزیں پوچھنی ہیں مجھے ایک بات بتاؤ کہ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں کیا چینج کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ کوئی آپ کے آپ کی سوچ کے مطابق
1: میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری تو ماشاء اللہ اتنی پیک پہ ہے کہ میں اس میں کوئی چینج انڈسٹری میں نہیں دیکھنا چاہتا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈراماز ہیں اس میں کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ڈالی جائیں جیسے ارطغرل ایک سیریز آئی تھی تو اس طرح کا کیونکہ ہمارے یہاں نا دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ہمارے یہاں ایک اتنی اسٹوریز ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک اس پہ فلمیں بناتے ہیں ہماری
0: اسٹوری
1: ٹھیک ہے اب ہمارے جو لیجنڈس گزر چکے ہیں ان کے اوپر آپ بایوپکس بنا سکتے ہیں ان کے اوپر ڈراماز بنا سکتے ہیں ہماری جو جنزی جو قوم چل رہی ہے جو یہ جنریشن چل رہی ہے سوری ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے جو لیجنڈس تھے وہ کیا تھے انہوں نے کیا کیا لائف کس طرح گزاری تو آپ ان پر کیوں نہیں ڈرامہ بناتے
0: دیکھیں میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں میں وہی بات ہے ڈیپتھ میں بات نہیں کروں گا ابھی یہ پچھلے ہفتے دیکھیں ایک سوسائٹی کا نیگیٹو نام ہے ٹھیک ہے جو ڈرگ ڈیلر جو ہیں وہ پکڑی گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی بایوپک بنانی چاہیے ان کے اوپر ڈرامہ بنانا چاہیے شمون عباسی نے بڑی اچھی بات کی کہ کیوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کیوں
1: میں
0: کیا وہ سوسائٹی میں بہت اچھا کام کر رہی تھی جو ان کے اوپر آپ بنانا چاہ رہے ہیں
1: میں اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں कि दैट्स व्हाई आई लव शमून अब्बासी, बहुत मेरा वो चीता भाई है और इस तरह के पंगे इंडस्ट्री में वही लेता है हमेशा से।
0: उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की,
1: देखिए मैं देखिए उन्होंने तो ऑफकोर्स कर दी बात, अब मैं भी इसलिए मैं अब जैसे मैं क्या बैठ के लोगों की मिसालें दूँ, लेकिन हमारे मुल्क में मैं फिर ये बात बोलूँगा कि हमारे जो शहीद हुए हैं ठीक है उन पर क्यों नहीं ड्रामा बनता। हमारी हमारी कौम को पता ही नहीं है, यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कितने शहीद हैं हमारे, हमारे कितने हीरोज हैं,
0: बहुत हीरोज हैं
1: यार, क्यों नहीं बनाते उनके ऊपर ड्रामा, आप उनके ऊपर बनाओ ना ड्रामा, हमारी आवाम को हमारी कौम को पता लगे यार कि हमारे ये लोग थे।
0: अभी आप रिसेंटली वसीम अकरम से मिले हैं यार, ही इज अ
1: लेजेंड यार, वसीम वसीम भाई पे बनाओ ना यार, वसीम भाई की मैं तो चाहूंगा कि उन पे बने कि यार आपकी नई जनरेशन। देखिए मेरे जिम वाली बात से मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कोशिश होती है कि यार मैं बड़ी पॉजिटिव चीजें लोगों में घुमाऊं फिराऊं, उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आऊं। यार हमारे हीरोज हैं ये, अब वसीम भाई हमारा एक लिविंग लेजेंड है भाई, अब वसीम भाई पर एक अगर ड्रामा बना जाए तो यार क्या बुराई है। ऑब्वियसली अब बात आ जाती है बजट पे, फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हम उसको उस लेवल पे लेकर नहीं जा सकते, बट फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्मों में भी वो आए, हमारे गामा पहलवान थे और उन पर फिल्म बने, एक फिल्म बन चुकी है हसन भाई ने बना ली है माशाल्लाह, उसमें हमारे हमजा भाई हैं, तो वो हमारे जो रेसर थे मैं नाम भूल गया, जो वर्ल्ड फास्टेस्ट थे यार, क्या नाम था यार मेरा, एक तो नाम इतने भूलता हूँ ना मैं, एनीवे उन्होंने उस पर फिल्म माशाल्लाह बना भी दी, तो ईद पर इंशाल्लाह करेंगे रिलीज और आप देखोगे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी। गुड, वो भी एक ऐसा टॉपिक है कि जो होना चाहिए। देखें जैसे अभी नबील कुरैशी ने एक मार्केट में एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि यार हम लोग कैपेबल हैं,
0: कर सकते हैं
1: किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, एंड ही प्रूव्ड इट। ठीक है, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दूसरे ये नबील भाई ही मुझे लगता है कि कोई किसी ऐसी चीज
0: जिंदगी में जो रिस्क लेगा, रिस्क की दो साइड्स होती हैं, या तो आप फेल हो जोगे या तो कामयाब
1: हो जाओगे,
0: लेकिन अगर आपको फेलियर का डर होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकोगे, आपको पता हो कि रिस्क ले रहा हूँ मैंने करना है ये,
1: ऐसे ही
0: तो फिर आप कामयाब होते हो।
1: डेफिनेटली यार रिस्क मैं समझता हूँ, मैं खुद लाइफ में बहुत हमेशा रिस्क लिए हैं और इसमें हार जीत मैं कहता हूँ नहीं होती, एटलीस्ट आप वो चीज़ पा लेते हो जब चाहते हो या फिर आप उसका एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो और नेक्स्ट टाइम वो चीज़।
0: अच्छा वक्त थोड़ा कम है, एक सवाल मैंने लाजमी पूछना है, आपका एक प्रैंक बड़ा मशहूर हुआ था अभी कुछ महीने प्रैंक बड़ा मशहूर हुआ था, बॉलीवुड की आर्टिस्ट है राखी सावंत,
1: जी जी
0: ठीक है। अच्छा दोधी खान ने, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है एक वीडियो क्लिप आया कि इस तरह मैंने उन्हें प्रपोज कर लिया है और शादी होने वाली है, मैंने दोधी को मैसेज करके पूछ लिया मुझे बता दे भाई क्या चल रहा है, इन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार चिल कर रिलैक्स कर, जो चल रहा है ना उसे इंजॉय कर, मैं उसे समझ गया था, लेकिन लोगों ने उसको इतना पसंद किया, उसको ऐसी हाइप दी कि वो इंटरनेशनल मीडिया तक वो बात पहुँच गई और पूरे सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर गई, दोधी खान जो है वो उनकी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है बॉलीवुड पर,
1: ऐसी है पूरे बॉलीवुड में।
0: वो कैसे प्लान किया, मतलब आपकी दोस्त हैं?
1: देखिए प्लान नहीं, प्लान वाला ऐसा कुछ भी नहीं, और बस उसमें कुछ उनकी एक दो कुछ, राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आज की नहीं बहुत पुरानी दोस्त है वो, तो बस उस वो एक कुछ चीज है जो डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि बात क्या थी, लेकिन वो बस एक बात हुई, उस बात को जिन्होंने उठा लिया वो ऐसा उठा लिया, वो फिर बस कुछ बातें कुछ ठीक भी होना शुरू हो गई, कुछ गलत भी थी बस वो,
0: लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात दोस्तों वाली की थी ना, मैं अभी वही बात कहूँगा, दोधी खान दोस्तों के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनते और उसमें राखी सावंत भी है
1: ऑफ कोर्स,
0: ठीक है, तो खैर वो, लेकिन हमने एंजॉय बड़ा किया उस सारे सिनेरियो को।
1: अच्छा, वो पॉजिटिव मोमेंट,
0: हाँ वो पॉजिटिव मोमेंट था, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं, लोगों का काम है अपनी सोच के मुताबिक बातें बनाना, ठीक है, और आप उस सारे सिनेरियो को एंजॉय कर रहे थे,
1: ऐसे ही,
0: हाँ, तो खैर आपने फिर जो दुबई में जाकर उसको सारा क्लेरिफाई किया सब कुछ, दिस एंड दैट, वो सारा बड़ा अच्छा। और दूसरा मुझे पता है रहीम परदेसी के साथ बॉक्सिंग का मैच कब आ रहा है, वो हम पिछले साल से इंतजार कर रहे हैं
1: यार, रहीम जो है ना वो अच्छा बच्चा है, ठीक है, और वो छोटा भाई है समझे, से बड़ा प्यार है मेरा, मेरी बड़ी उससे गपशप होती रहती है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए बेसिकली जो रहीम चाहता है ना, वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ मार्केट में लाना चाहता है कि यार आप हेल्दी स्पोर्ट्स करें, बच्चों को मोटिवेट करना चाहता है स्पोर्ट्स की तरफ और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसको मेरा ख्याल है मेरे साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। वो
0: आपने पहले उनको कह दिया था मैं इतना मारूंगा,
1: वो तो फिर मैं बहुत मार दूंगा ना, मसला ये है। वो बॉक्सिंग तो हट जाएगी ना, फिर मसला ये है हम लोग उसको बड़ा फिर ईगो पे ले लेते हैं, हमें कोई कोट दे जिगर पे हम घर जाके मारते हैं, मसला ये। लेकिन ये कि नहीं, वो बहुत अच्छा अभी जा रहा है, उसकी फाइट है
0: अभी लंदन में है,
1: उसकी फाइट है और मैं उसको बड़ा ऑलवेज सपोर्ट करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ अगर हारा तो फिर मैं घर आके मारूंगा और वो जीतता है और मुझे लगता है मेरे इस डायलॉग में वो जीतता है और अभी मैं उसको फिर कहने लगा हूँ कल वीडियो बना के।
0: नहीं, उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, हर टाइम वो इस कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सबसे बड़ी बात है। उनका कैरेक्टर नसरीन का जो है ना, वो
1: बड़ा जबरदस्त, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन इवन, बहुत उसके कंटेंट बहुत प्योर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ।
0: अच्छा दोरी, टाइम थोड़ा कम है, दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। एक मुझे बताएं कोई आपका हिडन टैलेंट जो किसी को नहीं पता।
1: यार मैं सब कुछ कर लेता हूँ, सब कुछ तो हिडन कुछ भी नहीं है, मुझे आप कुछ भी कहोगे मैं क्या होते हैं और मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ।
0: अच्छा दोरी, टाइम थोड़ा कम है, दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। एक मुझे बताएं कोई आपका हिडन टैलेंट जो किसी को नहीं पता।
1: यार

0: इंसान की एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। तो अगर मैं कभी भी बैठ के सोचता हूँ अकेले में कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मेरी पर्सनल जो चीज़ें हैं, कोई और मर्द होता तो शायद वो बहुत पता नहीं क्या कर जाता। तो मैं उस चीज़ को कभी भी मैं दूसरे को सुन के यही शो करता हूँ कि हाँ यार तू ज़्यादा तकलीफ में है। तो लेकिन जिस जिस चीज़ से मैं हर वक्त गुजरता हूँ वो इट्स अनबियरेबल फॉर मैं अगर
1: लोगों को बतानी भी नहीं चाहिए।
0: नहीं मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं अगर वो एक बात बोल दूं तो आप हैरान हो जाओगे। तो इसलिए एक नहीं बहुत सारी चीज़ें जो जाहिर बात है हर इंसान की एक लाइफ होती है, जो स्क्रीन पे नज़र आता है वो कुछ और है, जो रियल लाइफ में वो कुछ और है। तो मैं जिस एक सिचुएशन से गुजर रहा हूँ वो इतनी बुरी है कि मैं कहता हूँ यार कि अल्लाह किसी को, वो हमारी पर्सनल चीज़ें जल्दी रहती हैं। लेकिन उसमें बात हुई कि बीइंग ए मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर बड़ा बिलीव है कि अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है आजमाइश में नहीं डालता। तो ये जो एक चीज़ है ये सुना भी है, बड़ों बुजुर्गों से सुना है, स्कॉलर से सुना है। तो फिर इसको मैं एक इम्तिहान समझता हूँ और मैं समझता हूँ यार अगर ये एक इम्तिहान है तो फिर मुझे इसे पूरा उतरना है।
1: मुझे आपकी बात से आपके वालिद साहब याद आ गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। मैं जब भी उनसे मिला हूँ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, ठीक है, हंसते हुए, तो वो आप में क्वालिटी है ये। अच्छा डोरी, शो को एंड करते हैं, एक मैसेज आपने देना है अपने फैंस को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहोगे?
0: यार मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालें। और मुश्किल है ये इस चीज़ पे अमल करना लेकिन नामुमकिन नहीं है। नमाज कायम करें ज़रूर, ठीक है, ये बहुत आपको चीज़ों से रोकती है और आप बहुत लाइफ में बड़ा चेंज आपको मिलेगा, आप करके देखें। और जब भी घर से निकलें, ये मेरा एक वो सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब भी आप जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, जब घर से पहला कदम बाहर निकालें तो सूरह वाकया सुना करें। तो आप अपनी लाइफ में इंशाल्लाह जो चेंज देखेंगे, जो मेरे साथ है, मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं वैस भाई, उन्होंने बात बताई थी कुछ साल पहले, तो मैंने इस चीज़ पर अमल करना शुरू किया तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स जितनी भी हों मुझे वो कम लगती हैं अब और चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। तो सूरह वाकया का सुनना घर से निकलते ही पहला स्टेप, बाहर है तो कानों में हेडफोन लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, अब सुने और बिलीव मी ये बहुत आपको, आप यार आप हसन आप करें, आप मुझे एक हफ्ते बाद कॉल करके बोलोगे कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो जाएंगी, जो हैं वो लगेंगे नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत आपको इजी हो जाएगी लाइफ
1: इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच डोरी खान, आप हमारे साथ शो में आए, कोशिश की आपसे वो बातें पूछें जो बाकी शोज में नहीं होती। और हमारी तरफ से 101 की मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, कि अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करे। और जो आपने ज़ॉम्बी मूवी के अंदर रोल किया है इससे भी अच्छे रोल्स जो हैं आप करें और इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन करते रहे और अल्लाह आपको कामयाब करता रहे। थैंक यू वेरी मच
0: एंड डू वॉच ज़ॉम्बी, जिसे नहीं देखी ज़ॉम्बी देखे जाए और मुझे टैग करें, मेरी कोशिश होती है मैं सबकी स्टोरीज अपने पेज पे लगाता हूँ, टैग करें मुझे, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। लव यू ऑल।
1: आप लोग वैसे तो आप सबको पता होगा डोरी खान का इंस्टाग्राम का पेज, टिकटॉक पे आप जस्ट लिखोगे डोरी खान आपको मिल जाएंगे, सो आप इजीली सर्च कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच डोरी खान हमें ज्वाइन करने के स्टूडियो में। और लिसनर्स, कोशिश की बहुत सारी बातें जो है हम कर सकें, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे डोरी खान। अभी भी बहुत सारे सवाल रह गए जो नहीं कर सके, फिर इंशाल्लाह आने वाले किसी टाइम में हम दोबारा इनको इनवाइट करेंगे, इंशाल्लाह जरूर उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप मुझे सर्च कर सकते हो हसनैन रज़ाली के HASNAIN स्पेस RAZ हसनैन रज़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो अभी मैं लास्ट ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी से ही प्ले करने जा रहा हूँ और उस ट्रैक के साथ आपको छोड़ूंगा। एक बड़ा अच्छा ट्रैक बहुत अच्छा ट्रैक है, ये मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ाई साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह।

अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं मनाज़ुर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आपने

पीपल्स पार्टी बजट मामला पर विपक्षी हुकूमत को गो अहेड नहीं दे रही है और नतीजतन हुकूमत को आज होने वाले कांग्रेस का इजलास मौखर बना। बजट पर मशावरत का मामला हम पर के

की साल पूनम जब तू आएगी आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है।

उंगलियों से जो टपके उस लहू की हालत आप जुल्फ जाना के हम संवारिए साहब आप जुल्फ जाना के।

0: जब आएगी।
1: उसके बाद जो है जब शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: बहुत पहले कर चुका हूं। आज जब हम इलेक्शन, माशाल्लाह, फॉर्मल निकाले।

0: चेतावनियां भी जारी कर चुका है।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101